ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो साल हर साल के फ़र्क हो जाने के बाद भी, मुद्दतों के फ़र्क हो जाने के बावजूद भी, ज़िंदगी के तरीक़ों में और ज़िंदगी के अंदाज़ में फ़र्क नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते, अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी नहीं हो रही होती है, बल्कि एक निज़ाम फ़िक्री है, उस निज़ाम फ़िक्री के तहत, एक फ़िक्री सिस्टम के तहत जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये फ़िक्री सिस्टम इंसान का कभी कभी गैर इलाही भी हो सकता है, और इंसान अपने तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों से इस्तेफादा करके एक फ़िक्री निज़ाम बना सकता है, लेकिन आली तरीन और बेहतरीन फ़िक्री

है कि जहाँ पर तौहीद का गलबा हो और जो है वो एक तौहीदी नुक्ते निगाह से दुनिया को देखा जा रहा हो, वर्ल्ड व्यू इंसान का जो है वो तौहीदी हो, जो रहबर शहीद की ज़िंदगी में हमेशा नज़र आया। आज जो हम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं मुख्तसर तौर पर एक एक एक पहलू पर रहबर शहीद की ज़िंदगी के, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खुदा महवर ज़िंदगी थी, यानी तमाम उमूर का महवर और मरकज़ जो है वो अल्लाह की ज़ात को देखते थे। और जब इंसान की ज़िंदगी खुदा महवर हो तो उसके नतीजे में जो ज़िंदगी सामने आती है और ज़िंदगी के जितने भी इकदाम होते हैं, जितनी कोशिशें होती हैं, जितनी हरकतें होती हैं, वो सब के सब जो है उसकी बाज़गश्त होती है, वो पलट रही होते हैं इलाही पहलू की तरफ। खुदा महवर के मुकाबिल में खुद महवर ज़िंदगी होती है, खुदा महवर और खुदा खुद महवर, इसी से खुद महवरी और खुदा महवरी का तसव्वुर सामने आता है। अगरचे ये लफ्ज़ मुमकिन है थोड़ा सख्त हो, महवर यानी किसी को मरकज़ करार देकर उसके गिर्द जो है इंसान जब चक्कर लगा रहा हो, तो कभी कभी इंसान जो है अपनी ही ज़िंदगी को मरकज़ करार देता है, और जब अपनी ज़िंदगी को मरकज़ करार कर देता है तो जो कुछ भी कर रहा होता है वो अपने लिए कर रहा होता है, अपने लिए या अपने से रिलेटेड लोगों के लिए सब कुछ कर रहा होता है। तो ये ज़िंदगी एक खुद महवर ज़िंदगी होती है और इसके नतीजे में खुद महवरी का तसव्वुर सामने आता है। खुद महवर इंसान धीरे धीरे अगर इसी को प्रैक्टिस करता रहा अपनी ज़िंदगी में तो इस हालत तक पहुंच जाता है कि मुमकिन है अपने आप को ये दावा करने लगे कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, मैं खालिक हूँ, या ये कि फ़िरौन के तरीके से या नमरूद के तरीके से अगर ये दावा ना भी करे, चूँकि फ़िरौन और नमरूद का नाम इसलिए ले जा रहा है कि बाकायदा उनके लिए नमूने मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह पेश किया इन्हीं कलमात के साथ कि जैसे कुरान में फ़िरौन के लिए ये लफ्ज़ जो है मौजूद है आयत कि वो इस तरह कहता था कि मैं तुम्हारा तुम सब का सबसे बड़ा रब हूँ, रब्बुकुमुल आला, सिर रब नहीं बल्कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। नमरूद के लिए वही मसला था कि जब जनाब इब्राहिम ने, यानी उसने अपने आप को रब के तौर पर पेश किया, जनाब इब्राहिम ने मना किया तो उसने पूछा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे रब कौन है, तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। और उसने ज़िंदान से दो लोगों को बुलाया, जिसके ज़िंदा रहने का हुक्म था उसको कत्ल का हुक्म दे दिया, मार दिया, और जिसको मरना था उसे छोड़ दिया। तो कहा ये तो मेरे अख्तियार में है, मैं भी जिसे चाहूँ ज़िंदा रखूँ, जिसे चाहूँ मौत दे दूँ। तो जनाब इब्राहिम ने फिर वहाँ पर कहा कि मेरा रब वो है कि जो मशरिक़ से सूरज को निकालता है और मगरिब में सूरज को ग़ुरूब करता है, सूरज सेट जो होता है, सनसेट होता है, वो मगरिब में होता है, वेस्ट में होता है। तो अगर तू भी रब है, तू भी खुदा है, तो ऐसा कर कि अब जो है वेस्ट से सूरज को निकाल और ईस्ट में सूरज को जो है ग़ुरूब कर दे। ज़ाहिर है फिर वो तो नहीं कर सकता था, और वहाँ पर कुरान कहता है कि अब काफिर जो मबहूत हो गया, वो हैरत में पड़ गया कि अब इसका क्या जवाब दिया जाए, ना उसका ज़बानी कोई जवाब दे सकता था और अमली जवाब तो मुमकिन ही नहीं था। इस तरह के दावा करने वाले लोग तारीख़ में रहे हैं, बाद लोग दावा करने वाले लोग रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो दावा नहीं करते लेकिन ख़ुद महवर ज़िंदगी गुजारते गुजारते फिर वो अपने आप को ज़हनी तौर पर नहीं लेकिन उनके अनकॉन्शस में या सब कॉन्शस में तहते ज़मीर में कहीं ये चीज़ रहती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर वो अपने ही मरकज़ के एतबार से हर चीज़ को देख रहे होते हैं, जो कुछ उनके मुताबिक है वो ठीक होता है और जो कुछ भी उनके मुताबिक नहीं है फिर वो बातिल होता है, वो गलत होता है। हत्ता कि बेहतरीन चीज़ें भी अगर उनके मुताबिक नहीं हैं, उनकी अपनी सोच के मुताबिक नहीं है, उनके फ़ायदे के मुताबिक नहीं है, तो वो गलत है। लोगों से रिश्ते भी उसी बुनियाद पर होते हैं, अगर मेरे मुताबिक चल रहे हैं तो ठीक है, अगर मेरे मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो मेरे दुश्मन हैं, मेरे मुखालिफ हैं, मेरे फलाँ हैं, हत्ता करीबी तरीन लोग भी, क्योंकि एक इंसान जो है ख़ुद महवर है। हत्ता यहाँ तक कि जो इशारे भी कभी किए गए हैं कि इंसान जो है जो ख़ुद महवर इंसान होता है वो नेचर की चीज़ों को भी अगर उसके मुताबिक ना हो तो उसको अपना दुश्मन ही समझता है। उसने बारिश जो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की बड़ी रहमत है जिससे पूरी ज़िंदगी चल रही है, उसे भी अगर उसके मुताबिक ना हो तो उसे कहता है कि मौसम ख़राब हो गया है या बारिश हो गई है, बारिश को
रहमत को जो है बुरी निगाह से देख रहा होता है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप को महवर खुद को समझा हुआ कि हर चीज़ हमारे एतबार से होना चाहिए।

चाहिए। अगर उसे उसके प्रोग्राम में कोई मुश्किल पेश आ रही है, उसके सफ़र में मुश्किल पेश आ रही है, या उसके किसी काम में मुश्किल पेश आ रही है, तो वो कहता है कि ये तो गलत हो गया, बारिश जो है गलत हो गई, बारिश जो नेमत है जिसकी वजह से ज़िंदगी सारी चल रही है, ख़ुद उसकी भी ज़िंदगी, लेकिन चूँकि उसके मुताबिक नहीं हुई है लिहाजा वो सही नहीं है। ये इंसान ख़ुद महवर इंसान की निशानियाँ हैं। ये चंद मिनट इसलिए ले रहे हैं ताकि इसकी बुनियाद पर हम अपने आप को समझ सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे, फिरौन तो नहीं है, नमरूद तो नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ख्याल हमारे दिलों में भी इस तरह रहे कि लोग मेरे मुताबिक सोचें, मेरे मुताबिक अमल करें, मेरे ही मुताबिक दुनिया हो, मेरे ही मुताबिक नेचर हो, मेरे ही मुताबिक सब कुछ हो, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें नापसंद है, और अगर ये नापसंद आ रहा है तो धीरे धीरे ये इंसान ऐलान करने वाला फ़िरौन तो नहीं, तख्त पे बैठने वाला फ़िरौन नहीं, हुकूमत करने वाला फ़िरौन नहीं, लेकिन अपने ज़ाती तौर पर छोटा सा फ़िरौन बनता चला जाता है। इस खुद महवरी के मुकाबले में दूसरा जो मरकज़ है वो है खुदा महवरी। खुदा महवरी में यह है कि इंसान जितना ज़्यादा बुलंद होता चला जाए, जितना ज़्यादा वसी उसकी ज़िंदगी होती चली जाए, जितना ज़्यादा उसके असरात बढ़ते चले जाएँ, उन सब को वो पलटाता है अपने रब की तरफ, उसकी रहमतों की तरफ, उसकी नेमतों की तरफ, और सब कुछ वो खुदा की तरफ से देखता है। लिहाजा जो कुछ करता है वो भी खुदा ही के लिए, यानी सिर्फ ये नहीं खुद को नहीं, ये कि हम तो अल्लाह के लिए हैं, लेकिन वो हम तो अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से। और जब ये समझता है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो सब कुछ अल्लाह के लिए होना भी चाहिए। इसे कहते हैं खुदा महवरी। और रहबर शहीद की ज़िंदगी जो है पूरी तरह से करीब से देखा हुआ जिन लोगों ने, और किसी हद तक बहरहाल एक पुरानी मुद्दत तक ईरान में रहने की वजह से और मुताले की वजह से, गुफ्तगू की वजह से, अमली नमूनों की वजह से, जो ज़िंदगी आपने गुजारी है अपने हम जैसे लोगों के होश व हवास में, वरना पहले से ज़िंदगी गुजर रही थी, उसमें हर तरफ ये पहलू नज़र आ रहा होता है, बयान में भी, गुफ्तगू में भी। बयानात के कुछ हिस्से इंशाल्लाह पेश किए जाते रहेंगे आपकी खिदमत में। बयानात के साथ साथ जो बयान करते रहे वही जो है अमली नमूने के तौर पर जो दिखाई पड़ता रहा वो ये कि रहबर शहीद, रहबर इनकलाब ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो उसको बिल्कुल खुद महवर की तरफ नहीं आने दिया, किसी पहलू से अपने लिए नहीं होने दिया, अपने बच्चों के लिए नहीं होने दिया, बल्कि मरकज़ियत जो है वो उसने उस अपनी उस ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात को करार दिया। अच्छा, यहाँ पर जो बुनियादी का नुक्ता है वो ये है कि एक इंसान तन्हा हो, छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हों, कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा हो, ऐसी जगह पर खुदा महवर होना आसान तर है। लेकिन यानी इनफरादी ज़िंदगी में या थोड़ा बहुत तजारत का काम हो, कोई और थोड़ा बहुत काम हो, किसानों के लिए और भी आसान होता है कि इंसान खुदा महवर ज़िंदगी गुजारे, लेकिन एक सियासी ज़िंदगी में खुदा महवर होना और एक सियासी ज़िंदगी में अपने तमाम फ़ैसलों में और तमाम इरादों में अल्लाह की ज़ात को नज़र में रखना, ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कभी बहुत पहले एक बार अर्ज़ किया गया था कि तकवा जो है, हर हालत में तकवा जो है एक मुश्किल सफ़र होता है, चाहे वो इनफरादी तकवा हो, अखलाकी तौर पे तकवा हो, मसाइल और अहकाम और दीन के पे पाबंदी के अतबार से तकवा हो, घर में या समाज में ज़िंदगी गुजारने में तकवा हो, इनफरादी तकवा, फैमिली लाइफ में तकवा, समाजी ज़िंदगी में तकवा, ये सब भी कुछ कुछ मरहलों के लिहाज से सख्त है, लेकिन मुश्किल तरीन तकवा वो सियासी तकवा है। यानी इस एतबार से सियासी तकवा की सियासत के मैदान में आने के बाद इंसान बातकवा रहे अपने फ़ैसलों में, अपने इकदामात में, अपने आने वाले नतीजों को देखकर तकवा ही पर भरोसा करता रहे, ये एक बहुत ही मुश्किल तकवा की बहुत ही मुश्किल सिफत पाई जाती होती है कि जो सियासी तकवा है। बिल्कुल इसी तरीके से सियासत के बड़े मैदान में रहने के बाद खुदा महवर रह के ज़िंदगी गुजारना ये एक मुश्किल मरला होता है। क्यों मुश्किल मरला होता है? इसलिए कि नमूने ऐसे मौजूद नहीं हैं, बहुत ही कम नमूने ऐसे मौजूद हैं, तारीख़ में बहुत कम ऐसे नमूने मौजूद हैं। यानी अगर फहरिस्त बनाना शुरू करें इंसान तो चंद नाम उभर कर सामने आएंगे जो सियासत के बड़े मैदानों में रहे हों और खुदा महवर रहे हों, और उसमें ज़ाहिर है कि सबसे अजीम नाम, सबसे मुक़द्दस नाम, सबसे

मुल्क के मुताबिक फ़ैसला हो जाए। ये बास फैसले ऐसे थे जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होना था मुल्क का, बहुत बड़ा नुकसान होना था। और ज़ाहिर है एक इंसान अगर एक मुल्क में हुकूमत कर रहा है तो सबसे बड़ी उसकी प्रायोरिटी जो है वो मुल्क होगा, लेकिन जब खुदा महवर ज़िंदगी हो और सियासत हो तो वहाँ पर ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं। लिहाजा पूरी ज़िंदगी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और रहबर इनकलाब फ़िलिस्तीन की हिमायत करते रहे, फ़िलिस्तीन के जो है महवर पे गुफ्तगू करते रहे, चूँकि एक इलाही मसला था, इलाही सरजमीन का मसला था और उसके लिए बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। अभी भी जो जंगें इतनी बड़ी लड़ी जा रही हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उसकी एक वजह, हम ये नहीं कह सकते कि सारी वजह, लेकिन बहरहाल एक अहम वजह जो वो फ़िलिस्तीन का मसला है कि फ़िलिस्तीन के लिए हमेशा खड़े रहे, बैतुल मुक़द्दस के लिए और मस्जिद अक्सा के लिए हमेशा खड़े रहे, दुनिया भर के मज़लूमों की हिमायत के लिए हमेशा रहबर इनकलाब खड़े रहे। ये कब होता है? ये इंसान अपनी ज़िंदगी अगर जी रहा हो तो अपने फ़ायदे देख रहा होता है, और अपने मुल्क में हुकूमत कर रहा है तो अपने मुल्क के फ़ायदे देख रहा होता है। मुल्क को ख़तरे में डालना, मुल्क के लोगों को ख़तरे में डालना, और अभी तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि मुमकिन है किसी वक्त जो है उसमें एटमिक सबमरीन भी लेके निकल चुके हैं कि उसमें एटम बम के, यानी पूरी दुनिया में ऐसी बातें चल रही हैं कि कहीं एटम बम का भी इस्तेमाल ना हो। तो ठीक है, वहाँ तक भी इस्तेमाल होना हो तो हो ले, ज़ालिमीन ये इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी जो उसूल हैं उन उसूलों से नहीं हटा जा सकता, और वो उसूल जो है चूँकि अपने उसूल नहीं हैं, अगर अपने हों तो उसे बदला जा सकता है, उसे तब्दील किया जा सकता है, लेकिन अगर वो इलाही उसूल हों और इलाही कानून हो और अल्लाह वालों की तरफ से वो कानून जो है वो मीरास के तौर पर महफूज हो तो उसमें भी कोई, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। लिहाजा उस हद तक भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि ये एक ज़ाती हुकूमत नहीं थी बल्कि एक खुदा महवर हुकूमत थी। क्यों खुदा महवर हुकूमत थी? क्योंकि खुदा महवर ज़िंदगी थी। क्यों खुदा महवर ज़िंदगी थी? इसलिए कि रहबर इनकलाब का निज़ाम फ़िक्री ही ऐसा था कि उन्होंने अपने आप की, उनके बुज़ुर्गान ने, उनके वालदैन ने और बाद में असातीद ने, इमाम खुमैनी जैसे उस्ताद ने रहबर इनकलाब की तरबियत ही ऐसी की थी कि ये ज़िंदगी इलाही महवर पे हो, सियासत भी इलाही महवर पे हो, हुकूमत भी इलाही महवर पे हो। और एक आखिरी नुक्ता जल्दी से अर्ज़ करके बात तमाम करते हैं कि ये खुदा महवरी का दर्स जो है, इशारा भी जैसे किया कि वो उन्होंने खुद ज़ाहिर है कि तारीख़ में अज़ीम इंसान है जिसके नमूने मौजूद हैं, रसूलुल्लाह की ज़ात, आइम्मा की ज़ात, अम्बिया की ज़ात, क़ुरान, लेकिन बहुत करीब से जो इन सारे नमूनों को सीखा वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से। मुमकिन है कि धीरे धीरे 37 साल गुजर जाने के बाद अभी इतना ज़्यादा इमाम खुमैनी का ज़िक्र नहीं हो रहा हो, लेकिन रहबर इनकलाब की कोई भी गुफ्तगू ऐसी नहीं होती थी, कोई भी तकरीर आम तौर से ऐसी नहीं होती थी कि जहाँ पर वो अपने आप को, अपना पेशवा, अपना रहनुमा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को समझते। तो हमारे बाज़ बुज़ुर्गान ने इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू भी की है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी किस तरह से खुदा महवर थी, सख्त तरीन हालात में, मुश्किल तरीन हालात में, बिल्कुल उसी तरीके से रहबर इनकलाब रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़िंदगी भी इस तरह से अल्लाह के महवर में गुज़री, और उसके नतीजे में अल्लाह ने एक ऐसी शहादत भी आपको अता फ़रमाई कि जिसके असरात जो है तारीख़ में बहुत देर तक बाकी रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंसानों पर वो असरात पड़ चुके हैं और पड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। असरात की गुफ्तगू हम कभी बाद में करेंगे, अभी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है ऐसी अजीम ज़िंदगियों को समझने और उसको गहराई से समझने और उस फ़िक्र को, उन अफकार को, उस निज़ाम फ़िक्री को समझने की तौफीक इनायत फ़रमाए और उस पर गामजन रहने की भी तौफीक इनायत फरमाए।

0: जिंदगी के उस जाविये में इस तरह फंस गया हूँ कि बस मैं खुद झगड़ा हुआ। बहुत सी चीज़ें आदत बन जाती हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज, मैं बातों का आदत से पढ़ रहा हूँ, भाई सलामती भी शायद आदत से ना खुदा ना खास्ता कर रहा हूँ, लेकिन वाकई एक फिक्र एक तफक्कुर के साथ आगे बढ़ना और वहाँ ये यकीन रखना कि इमाम देखते हैं, इमाम देख रहे हैं, हमारा अमल भी इमाम तक पहुँच रहा है, बाकी आगे जितना नजर करम होगा इंसान आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और बहरहाल देखिए हमेशा ये भी याद रखे कि गैबत कुबरा में असल फ़लसफ़ा गैबत को भी समझे। हर किसी के लिए इम्कानात में या हर किसी से भी इमाम मिलना असल फ़लसफ़ा गैबत यही है कि मैं उसी के अंदर ईमान लेकर आऊँ, तभी मेरा ईमान का लेवल भी आगे बढ़ेगा और तभी मैं आजमाया जाऊँगा, तभी मैं उस रकाब में आगे बढ़ूँगा।
1: तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, हम ये एक मोमिन जवान एक शिया अहले बैत का चाहने वाला मौला का चाहने वाला जिसे तड़प है अपने इमाम की, कैसे मुमकिन है कि हर वक्त हम इमाम को अपनी याद में रखें और इमाम की तवज्जो को अपनी तरफ खींचें?
0: देखिए बहरहाल ये प्रैक्टिकली इस मादी दुनिया के अंदर जो है वो दुनिया है, दुनिया भी अपना रंग दिखाती है और दुनिया भी आपको इधर उधर लेके जाती है। कमाल ये है कि आप मिसाल के तौर पर एक आप गाड़ी चला रहे हैं, एक हाईवे पे हैं, अभी आपको फोकस रोड पे करना है और अपने आसपास मिरर से भी देखना है क्योंकि आप जिस ट्रैक पर हैं आपको अपने ट्रैक पर भी रहना है, पीछे आने वाली गाड़ी की स्पीड पे ही मुतवज्जे रहना है कि अगर मुझे ट्रैक चेंज करना है तो, आगे आपने ताबलों पे भी यानी जो बना हुआ है साइन बोर्ड उस पर भी तवज्जो रहनी है कि आपने मोड़ना कब है, स्पीड चेंज कब करनी है, लेकिन फोकस आपका कहाँ है? फोकस आपकी मंजिल है। तो अगर हम इस तरह अपनी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करें तो हमें बढ़ना अपने इमाम की तरफ है, इमाम की अतात करनी है, इमाम के ज़हूर के लिए काम करना है। और अतात कुरान भी यही कह रही है कि बहरहाल अल्लाह की अतात, रसूल की अतात, उलुल अमर की अतात करना है इमाम। लेकिन रास्ते में डाइवर्जन्स हैं, रास्ते में चीज़ें हैं कि जो आपको मुतवज्जे अपनी तरफ करेंगी, करेंगी। पीछे से गाड़ी आ रही है, आपको बीम लाइट मार रही है, रेडर मार रही है, रेडर मार रही है, चलो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए आपको ट्रैक चेंज करना है, स्लो होना है, फिर वापस अपने ट्रैक पे आ जाना। ज़िंदगी ये है। अब ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आपने अपनी ज़िंदगी के नुक्ते डॉट कहाँ रखे हुए हैं कि जहाँ कोई भी लाइन इधर इधर जा रही है कितनी जाए कि दोबारा वो कनेक्ट ऐसी हो जाए कि वो दोबारा आप फोकस हो जाए। आपको स्पोर्ट्स करते हैं, आप खेलते हैं, आप वर्जिश करते हैं, आपको हाइकिंग करते हैं, आपको और काम करते हैं, क्यों करते हैं आप? मैं अपने आप को फिट रखूँ क्यों? मैं इमाम ज़माना के लिए। वो फोकस हो गया, आप दोबारा इमाम ज़माना की तरफ चले गए। आपको कार्य खैर करते हैं, आप वेलफेयर का काम करते हैं, आप सारा काम किस लिए कर रहे हैं? माशरा अच्छा हो, जानियत की भलाई हो, क्यों? इमाम ज़माना के ज़रूर के लिए। वो मेरा इमाम की तरफ चले गए। यानी ये अब आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात को डॉट्स की तरह बनाना ऐसा है कि जब ये दूर से बड़ी तस्वीर देखी जाए तो ये इमाम नज़र आए। ये अब आपके अपने ऊपर।
1: इमाम की तवज्जो अपनी तरफ कैसे खींचे?
0: इमाम की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए यही है कि देखें आप तड़पेंगे, बल्कि ये तो उल्टा ही है वैसे तो, जो हमने उलमा से सुना है कि आप जब तड़पते हैं तो असल में इमाम आपको चाहते हैं कि आप मुतवज्जे हों। हाँ इमाम तवज्जो, ये तुम्हारी तवज्जो कि क्या ये सारी चीज़ें मुझे इमाम की तरफ लेके जा रही हैं? असल ये खुद बता रहा है कि तुम इमाम की तरफ जा रहे हो। असल कौन पूछता है क्या मैं कर रहा हूँ इमाम से राजी है? इसका मतलब है कि तुम इमाम की तरफ बढ़े हो। अब ये उसमें कमी पेशी सब कुछ है लेकिन बढ़ तो इमाम की तरफ।
1: ये उनकी इनायत है, उन्होंने तुमको याद
0: रखा। हाँ ये वाकई इनायत है।
1: और कहा भी है मौलाना ने कि ये हमारी नजरें तुम्हारी तरफ हैं, हमारी तवज्जो तुम्हारी तरफ,
0: तुम्हारे हाल से बाखबर हैं।
1: अगर हम बाखबर ना होते तो
0: मैं खुद मैं कई दफ़ा आपको बताया कि मजलिस पढ़ते हैं और जब भी पढ़ते हैं और गुफ्तगू पूरी कोशिश होती है, यकीनन इसमें हमारी कोई नहीं है, इमाम का करम होता है कि हम गुफ्तगू को इमाम की तरफ लेके जाएं और लोग पसंद भी इसलिए करते हैं, एक लोगों के अंदर चाहत भी यही है कि हर गुफ्तगू जो है वो इमाम ज़माना की तरफ है। तो खुद महसूस होता है कि असल इतना अचानक से एक निगाह करम हुई और अंदर एक पैगाम डला जैसे कि ये बात पढ़ो तो तब हमारी तो बात करो।

क्या है, चाइना है और बहुत सारे मुल्कों की आवाम है, और दूसरी तरफ से क्या है, दूसरी तरफ से अमेरिका है, यूरोप यूरोपियन कंट्रीज हैं और उनके जो मकबूज काबिज हुकूमत है वो उसकी सबसे बड़े अलाइज, और उसके अलावा क्या है इनके पास। तो ये एक जंग है जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। दोनों तरफ की भरपूर कोशिश ये है कि चीन बराह रास्त ना आए, दोनों तरफ की भरपूर कोशिश ये है कि चीन बराह रास्त ना आए, कुछ चीनी भी नहीं चाहते।

तो ये एक जंग है जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। दोनों तरफ की भरपूर कोशिश ये है कि चीन बराह रास्त ना आए, दोनों तरफ की भरपूर कोशिश ये है कि चीन बराह रास्त ना आए, कुछ चीनी भी नहीं चाहते। ऐसे अर्ज कर रहा हूँ, 2001 में जब अमेरिकन्स ने 9/11 के बहाने अफगानिस्तान का रुख किया था, तो उस ज़माने में हमने एक पेपर लिखा था, तो उसमें हमने अर्ज़ किया था कि चाइनीज़ पॉलिसी कम से कम 2020 तक अपने आप को किसी जंग में न डालने की है, ये 2020 तक किसी जंग में नहीं जाएंगे और इस दौरान में अमेरिका को मुख्तलिफ जंगों में फंसा फंसा के थका चुके होंगे। प्रैक्टिकली हम उसी जगह पर खड़े हैं, चाइनीज़ अभी तक नहीं चाहते कि डायरेक्टली किसी जंग में जाएं और इतना मैसिव तैयारी किए बैठे हैं कि अगर कूदे मामला अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और अमेरिकन्स भी इस बात को जानते हैं। तो हम बहुत क्रिटिकल जगह पर हैं, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है चाइना से बचे, और मैंने अर्ज़ किया चाइना भी नहीं चाहता है। तो हम इस जगह के ऊपर आ चुके हैं कि एक जंग है जो मुसलसल चले जा रही है और हर दफ़ा ये डर होता है कि ऐसा ना हो अब कंट्रोल के बाहर चला जाए, और इस बीच में ज़ाहिर है जो बहुत बड़ा एक ख़तरा सबके सरों के ऊपर मंडलाता रहता है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर का है, कि ऐसा ना हो कि किसी भी गलती की वजह से भी कोई छोटा मोटा एटमी असलाह इस्तेमाल हो गया, उसके बाद क्या होने वाला है अल्लाह जानता है, उसके बाद क्या होने वाला है। पर इस बीच में पाकिस्तान भी है, अब जाहिर है कि ये सारी महाजाराइयाँ हो रही हैं और इस बीच में पाकिस्तान भी इस मंतरे के अंदर, इस इलाके के अंदर मौजूद है। एक बड़ी अजीब बात मेरे जहन में आ जाई मुझे कि हमारे पास अमेरिका की एडवर्सरी में, अमेरिका की दुश्मनी में जो दो बड़ी पावर्स हैं, ईरान की और चाइना की, 1979 से पहले ये दोनों काबिल ज़िक्र भी नहीं थे। 1979 से पहले कोई इन दोनों में से कोई काबिल ज़िक्र नहीं था कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी पावर बनने वाले हैं। ये बहुत अजीब बात है, यानी अगर 1979 की मैं बात कर रहा हूँ तो हम सिर्फ 46-47 साल की बात कर रहे हैं, 50 साल में दुनिया का नक्शा इतना बदला है, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि सिर्फ 50 साल के अंदर वो दो मुल्क जिनके बारे में कोई 79 में सोच भी नहीं सकता था, 78 ले लीजिए आप, सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका का अगला मुकाबला इन दो से होने वाला है, और वो दो हैं और बहुत ताकत के साथ हैं। एक और फर्क है उस जमाने में और इस जमाने में, वो ये है कि इस वक्त की जो जंगें हैं वो लोगों को इन्वॉल्व कर रही हैं। पहले जंगें होती थी, मीडिया बहुत लिमिटेड था, जो कहता था लोग सुन लेते थे, अब ऐसा नहीं है, अब लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से बार बार वो बाउंड्रीज जो बनती हैं सिस्टम के अंदर, वो बाउंड्रीज टूटती हैं। अभी आपने शायद हफ्ता चंद दिन पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर देखा कि जब वो गासिब हुकूमत का वज़ीर आज़म खड़ा हुआ तकरीर करने के लिए, तो वो हत्ता वो कंट्रीज जो उनके अलाइड समझे जा रहे थे वो भी हॉल खाली करने के ऊपर मजबूर हुए, और ये सिर्फ अपने पब्लिक के प्रेशर की वजह से मजबूर हुए। तो ये एक अजीब दुनिया में बस गए हैं इस वक्त हम लोग, और ये मुकाबला जो है वो इस वक्त चल रहा है। अब ये था कि पाकिस्तान का इसके बीच में क्या किरदार है और ख़ासकर पाकिस्तानी शियत का क्या किरदार है। मैं यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा मौजू की तशरीह कर दूँ आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने बाज़ हसासियतों से बचने के लिए मौजू को थोड़ा सा मुबहम रखा है, हमने बरसगीर लिखा है, जबकि बरसगीर हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू पाकिस्तान है, और हमने कुछ और भी उसके अंदर लिखा है, लेकिन हमारा मौजू ख़ास कर ये है जो मैं ऐलान अर्ज़ करने वाला हूँ, वो ये कि पाकिस्तान में तशय्यों की सूरत हाल इस जंग के हिसाब से क्या रही, किस जंग के हिसाब से, जो आलमी इस्तिकबार के ख़िलाफ़ जंग जमहूरी इस्लामी की क़यादत के अंदर चल रही है तकरीबन 50 साल से, हमारी सूरत हाल क्या रही और अगले औकात में, अगले ज़माने में इसको बेहतर करने के लिए हमारी पोजीशन में क्या तब्दीली आनी चाहिए। असल मौजू हमारा ये है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा हसासियत कम करने की खातिर उसके मौजू को थोड़ा सा फैला दिया, ताकि वो बात इतनी चुभे नहीं सुनने वालों को। तो अब जो सुनाना है वो असल में इसके ऊपर सुनाना है। अब मैं मजबूर हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात कर लूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार इस 50 साल में रहा है वो किरदार क्या रहा है।
کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ پاکستان کی شیعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو نہ دیکھیں، پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، وہ حکومت

कोई फौजी कार्रवाई करने लगता है, उससे 2 साल 2.5 साल पहले यहाँ की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और फौजी आमरियत, फौजी हुकूमत बराह रास्त आ जाती है। ये हमेशा ऐसा हो रहा है। यानी अगर आप पीछे जाके देखें, आखिरी 3 को अगर मैं कम से कम ला सकूं, तो आपके पास 1979 में अफगान जंग है और 2 साल पहले कुछ हुआ है, और उसके बाद एक और अफगान जंग 2001 में है जब अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान आया है, और उससे पहले 2 साल 2.5 साल पहले कुछ हुआ है, और उसके बाद 2025 जून में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया न्यूक्लियर साइट के ऊपर, और उससे 2 साल पहले यहाँ कुछ हुआ है। जबकि जब कोई और भी होता है तो मास्टर वही होते हैं, फिर भी कोई ज़रूरत अमेरिका की ऐसी होती है कि अब कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप ही को होना चाहिए। या आप उनको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि अब हमारा होना बहुत ज़रूरी है, कोई मसला है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की पावरफुल सेक्टर, अमेरिका के मफादात और इन तमाम के अंदर, और जिसकी कीमत कौन पे करता है? पाकिस्तानी अवाम, ये बेचारे इसकी कीमत पे करते हैं। और अगर उसके पीछे जाकर देखूँ, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो बार बार इन हरकतों से टूटता रहता है और कभी उसमें बनने की ताकत नहीं आ पाती। बहरहाल पिछली 2 दफ़ा जब 2 साल पहले जमहूरी हुकूमत गई थी तो वापस आने में काफ़ी टाइम लग गया था, अल्लाह करे कि इस दफ़ा थोड़ा जल्दी वापस आ जाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद तो ये पाकिस्तान है। अच्छा, अगर पाकिस्तान को ईरान से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो यहाँ शियों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने? थोड़े बहुत तो रखने पड़ेंगे, सही है। लेकिन इस बीच में एक और बहुत बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान को एक और जगह से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं, और वो अपनी किसी और मुश्किल की वजह से है, और वो आले सऊद है। और आले सऊद जब बीच में आती है तो फिर पाकिस्तान और शियों के साथ, हुकूमत और शियों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रह पाते। और इसकी निशानी कब जाहिर होना शुरू हुई? इसकी निशानी खासकर अगर मैं बिल्कुल पॉइंट करूँ तो मैं 1984 को पसंद करूंगा 2014 तक, 1984 से 2014 तक। क्यों मैंने 30 साल लिए हैं? इस पर वक्त लगाने की हमें खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके देख लीजिएगा कि ये 30 साल मैंने क्यों पिक किए हैं। ये वो जगह थी जो हमारे लिए सख्त तरीन वक्त था, और इसमें टाइम ऐसा आया था तकरीबन 1990 के बाद, जिस वक्त ये तय हो गया था कि पाकिस्तान में इस ग्रुप ने इस शिनाख्त के साथ नहीं होना, इसकी कोशिश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शिया की रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, शिया की इस्तेकामत बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया में जो कोई सियासत जानता हो बरसगीर की और पता नहीं मिडिल ईस्ट की, उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि शिया की इस्तकामत बहुत ज़्यादा है, ये लोग कम समझें हम लोगों को। तो बहरहाल जो पाकिस्तान में उस वक्त फैसला करने वाले थे अहले हल व अक़्द, उन्होंने ये समझा था कि शायद ऐसा मुमकिन है, और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की इसके ऊपर, हमने काफ़ी क़ुरबानियाँ भी दीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2014 के बाद तकरीबन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया या अनाउंस कर दिया। ये दोनों जुमले मैं कह रहा हूँ आपसे पेशावर के एक स्कूल के वाक़े को देखते हुए, या रियलाइज़ कर लिया या अनाउंस कर दिया कि अब हम ये नहीं करेंगे, सही है, बहुत अच्छा हुआ। फिर 2017 में MBS साहब आ गए, जिन्होंने इस्लाम की जो ठेकेदारी थी उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, और उसके बाद फिर मामला कुछ और तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो वो जो प्रॉब्लम थी हमारे सरों के ऊपर हमेशा के लिए, वो वहाँ से ख़त्म हो गई। लेकिन एक और मुश्किल हमेशा की बाकी है, बस हमारे ताल्लुकात में एक सऊदीया

इन्वॉल्व हुआ है पाकिस्तान में शिया के साथ, हुकूमत के साथ। एक और फैक्टर है जो बहुत पावरफुल इन्वॉल्व हुआ हुआ है और उसको भी हमें देखना है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अकबर बादशाह के दरबार में एक बहुत ही मुतासिब किस्म का आलिम हुआ करता था और वो अहले बैत अतहार के चाहने वालों से काफ़ी बुग्ज़ रखा करता था। एक दफ़ा उसने बहुत तप कर अकबर बादशाह के सामने कहा कि आप दरबार में जितने लोग बैठे हैं इनको ईरानियों को एक तरफ कर दें और हिंदुस्तानियों को एक तरफ कर दें। जो माहरीन फ़न वहाँ बैठे हुए थे दरबार में, यानी निकम्मे लोग वहाँ पर नहीं थे, माहिर थे किसी न किसी फील्ड के, उनको आप एक तरफ करें, ईरानियों को एक तरफ करें, पाकिस्तानियों को एक तरफ करें। तो उसने कहा ये जितने शिया हैं ये सब ईरानी जासूस हैं अकबर बादशाह के दरबार में। हाँ, तो बाहर वहाँ पे उन्होंने एक काम कर दिया तो बात सही थी, सिवाय एक बंदे के, सिवाय एक साहब के, मुल्ला अहमद, जिनका ताल्लुक ठट्टा से था। वो बरसगीर के ओरिजिन के आलिम थे कि जो शिया थे, लेकिन बाकी सब ईरानी ओरिजिन के थे। तो उसकी बात ना साबित हो सकी और ना इतनी आसानी से रिजेक्ट हो सकी। ये इल्ज़ाम गोया हम लोगों की घुट्टी में लग गया, चल रहा है, इससे हम निकल भी नहीं पाते। जब इनकलाब के बाद शायद हम लोगों ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि शायद हम उसमें और ज़्यादा फंसते चले गए। पहली बात तो ये कि जैसे ही इनकलाब आया, इनकलाब इस्लामी 1979 में, तो पहला वो मुल्क जिसने इससे मुतासर होना था वो सारे शवाहिद कह रहे थे पाकिस्तान में, सारे शवाहिद कह रहे थे। उसकी बस एक वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान मैंने हम बरसगीर, हमारी कल्चर है। आप बरसगीर को नक्शे में देखिए, बरसगीर के मशरक में कुछ मुल्क हैं, ठीक है, मसलन बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश के बाद और दूसरे मुल्क हैं, आप बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कॉम्बोज, इस तरफ जाएंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके बाद फर्दर। अच्छा, बरसगीर के मगरिब की तरफ देखिए, मगरिब की तरफ देखें तो आपके पास अफगानिस्तान है जो एक ज़माने में ईरान का हिस्सा था, फिर खुद ईरान है, फिर सेंट्रल एशिया है वो भी ईरान का हिस्सा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो बरसगीर है इसकी सकाफत मशरक से मुतासर है या अपने मगरिब से मुतासर है? हम लोग सकाफती एतबार से हमेशा अपने मगरिब से मुतासर रहे, यानी पाकिस्तान की जो आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें जाके आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये जो ऊपर ब्लू टाइल लगा हुआ है, सही है, ये सारा का सारा तकरीबन आपके मगरिब से, मगरबी सकाफत से मुतासर होके आ रहा था, यानी वस्ती एशिया से और अफगानिस्तान से और ईरान से। तो पाकिस्तान की सकाफत यानी बरसगीर और उसके अंदर पाकिस्तान, इसकी सकाफत का नेचुरल फ्लो ये था कि ये अपने मगरबी साइड पर होने वाली तब्दीलियों से मुतासर होता है, हमेशा यही था। तो जैसे ही वहाँ पे इनकलाब आया होगा फौरन स्ट्रेटजिस्ट समझे होंगे कि ये असर में आएगा। अच्छा, एक और अजीब बात है, ईरान की सकाफत का उसका फ्लो किस तरफ है, मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ है? ईरान के मशरिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया इस वक्त के ईरान, और उसके मगरिब में है अरब ममालिक। तो उसकी सकाफत का फ्लो किधर है? उसकी सकाफत का फ्लो भी इधर ही है। तो हम उस जगह पे थे जहां हम भी उनसे लेने वाले थे और वो भी हमें देने वाले थे। तो पाकिस्तान को यकीनन ईरानी के इस्लामी इनकलाब से मुतासर होना था और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह पता थी कि इसका जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं बंद कर पाएंगे। अच्छा, एक और मसला भी था यहाँ पर, वो ये कि जो सर जंग के ज़माने के स्ट्रेटेजिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो हमारे मेहरान के अंदर डिप्यूट हुए हुए थे, जो आपकी कोस्टल हाईवे है, ये जब तक कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुई ये कोस्टल हाईवे नहीं बनी, जबकि इसकी प्रपोजल्स 50s से चल रहे थे। तो इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे अमेरिकन्स के स्टेशंस थे और उनके वो बैलिस्टिक मिसाइल थे जो रशिया को काउंटर करने के लिए वहाँ थे, तो कोई चांस नहीं था कि अमेरिकन्स इस जगह को किसी के हाथ में जाने देते, लिहाजा कोई चांस नहीं था कि अमेरिकन्स ये रिस्क लेते कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान का असर पड़े और यहाँ इस्लामी इनकलाब रुनुमा हो।
اور یہاں پر مودودی صاحب نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کر دیا تھا تو فوراً ان کے مہرے حرکت میں

खत्म हो गए, अमेरिकन और उनके अलाइड जो भी इटालियन और फ्रेंच और फला फला जो सब खत्म हो गए, पाकिस्तान में है कोई? मेरा ख्याल है कि नहीं है। 2001 में जो जंग हुई थी 9/11 के बाद, उसके बाद अमेरिका ने यकीनन यहाँ बेसिस रखे थे, लेकिन वो समेट के चले गए। और उससे पहले जो कोल्ड वॉर के ज़माने में थे वो भी बेस समेट के चले गए। बेज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान की ज़मीन पर उनकी कोई बेसिस नहीं है। तो मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि शायद हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे ट्रू ऑब्जेक्टिव हो सकते थे जिबहे मुकावमत की मदद के लिए, वो ऑब्जेक्टिव हो क्या सकते थे? बस अगर कोई ये सोचे कि हमें उसी तरह असलहा लेना था हाथ में जैसे लुबनान ने लिया या यमन ने लिया या मसलन इराक ने लिया, मैं अर्ज करूँगा शायद ईरान भी इसके लिए तैयार नहीं होता, शायद ईरान भी तैयार नहीं होता। ये भी अर्ज करता चलूँ आपकी खिदमत में कि जब यमन में जो बाद में अंसारुल्लाह के नाम से मशहूर हैं, इन लोगों ने असलहा उठाकर दारुल हुकूमत के ऊपर पहुंचने की कोशिश की थी, हत्ता अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त बैरक ओबामा इसको एक्सेप्ट करता है कि ईरानियों ने उनको रोकने की कोशिश की थी, और ईरानियों ने उनसे कहा था कि अगर आप वहां पर पहुंचे तो फिर आपको एक सिविल वॉर का सामना करना पड़ेगा जो लंबी सिविल वॉर होगी। बहरहाल उस वक्त यमनियों ने उस रिस्क को लिया और वो लंबी सिविल वॉर शुरू हो गई। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ईरानी ये समझ रहे हो कि जिबह मुकावमत की नुसरत में पाकिस्तानी शिया यहाँ असलहा उठाते। मेरा नहीं ख्याल वही चाहते। मेरा नहीं ख्याल ईरानी कभी 1% भी ये रिस्क लेंगे कि पाकिस्तान में कोई दाखिली जंग हो जाए, कोई भी नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनका मशरकी बॉर्डर उसी तरह इनसिक्योर हो जाए जैसा कि इराक हो गया था, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को ईरानी यकीनन चाहेंगे, लेकिन और जिबह मुकावमत चाहेगा। तो जो हमारी कमजोरी रही वो क्या रही, बस ये अगर किसी के जहन में है, ये मेरा नहीं ख्याल वो चाहते थे। जो हो सकता था जो हम नहीं कर पाए वो क्या है, अब मुझे उसको कहना है आपकी खिदमत में। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब यहाँ पे आके एक पॉइंट और अर्ज करता चलूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम कोई बात कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, बेजाहिर ये लग रहा होता है सब सही समझ रहे हैं, बाद में वो कोई बात कहते हैं जो हमें पता चलता है इन्होंने बिल्कुल उल्टा सुना था, जो हमने कहा था कि नहीं है वो उन्होंने सुना कि है। अभी कुछ वक्त पहले ऐसा हुआ कि मैंने कहीं नमाज गुफैला के बारे में बताया कि मगरिब की अजान के 1 घंटे के अंदर अंदर पढ़नी चाहिए, तो किसी ने मुझे सवाल भेजा वॉइस मैसेज में कि ये जो आपने कहा कि वो फैला 1 घंटे के बाद पढ़नी चाहिए, अब मैं हैरान इस बात पे था कि मैंने प्रिसाइसली ये कहा था कि 1 घंटे के अंदर पढ़नी चाहिए। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं भाई, ये काम बहुत दफा होता है, हम कुछ और कह रहे होते हैं, सुनने वाला पता नहीं उस दिन क्या सोच के आया होता है, वो कुछ और सुन रहा होता है। तो भाई अब चूंकि बहुत एक क्रिटिकल बात होने वाली है, इसलिए प्लीज़ ज़रा गौर से सिर्फ वही सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ और कुछ और मत कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले और भी हुआ, अभी अंचोली में मैं गया, एक मैंने मजलिस पढ़ी, उसमें मैंने शाबे अबी तालिब के कुछ मसाइब बयान किए, मसाइब के अंदाज में नहीं, तकरीर के दौरान ही बयान किए। तो बाद में एक साहब ने आकर कहा कि आपने ये कहा कि औलाद अहले बैत ने ये खाया, मैंने कहा खुदा शाहिद है अभी तो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, मैं जिंदा खड़ा हूँ, मैंने ये नहीं कहा है। विद इन मिनट्स। तो मैं वाकई बात औकात हैरान रह जाता हूँ कि ये इंसानी दिमाग क्या कर रहा होता है, इस सुनने में कैसे एडिशन सब्सट्रक्शन कर देता है कि बात ही खराब हो जाती है। तो अब जो मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि हमने जो कुछ किया उसमें मुस्बत काम बहुत हैं। कोई ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 50 साल में कुछ नहीं करके दिया, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो आप बैठे हैं, मुझे पाकिस्तान में ईरान से वापस आकर तालीम के बाद यहाँ आए हुए 30 साल हो गए, सही है। और बाज़ औक़ात अल्लाह की कोई मशीयत होती है, हमने तकरीबन 27 साल पहले इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए थे, एक प्रोग्राम यहाँ पर भी किया था IRC में। उस वक्त हमारे बाज़ दोस्तों ने कहा था कि ये हम नहीं चलने देंगे, वो कामयाब हो गए, यहाँ नहीं चलने दिए थे, बाकी जगहों पे चल गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल के बाद हो गया दोबारा वही।
تو بعض اوقات

लगता है जैसे कामों को होना ही अपने टाइम पे होता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, तो ये होता है कौम के साथ। मैंने कह रहा कि हमने कुछ नहीं किया, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 50 साल में बहुत कुछ हुआ है अल्लाह का शुक्र, फिर भी जो नहीं हो पाया वो ये है, फिर भी जो नहीं हो पाया वो ये है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पहली चीज़ जो मेरे ख्याल में कमी रह गई है वो ये है, अभी तक हम जिस तरह मुस्तकिल बाएतमाद कौम होने के नाते अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए था हमें, वो हम अभी भी नहीं हो पाए, अभी भी नहीं हो पाए। क्या मेरी नज़र में सिर्फ माल है? नहीं, माल भी है, सकाफत भी है, और अपने अंदर फैसलों को करने की ताकत भी है। ये कमी हमें रह गई। तकरीबन 25 साल पहले जो मुझे याद आता है एक प्रोग्राम हुआ था, उसका उन्वान कमोबेश यही था, कमोबेश यही था। मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ना बोलूं वरना वो प्रोग्राम आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो उसका प्रोग्राम कमोबेश यही था। उसमें भी हमने यही अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि हमें अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे बाज़ दोस्त अहबाब इतने सख्त हमसे नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि आप विलाई निज़ाम का इनकार करने की बातें कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह शाहिद है, ना उस वक्त ना अब हम विलाई निज़ाम के इनकार की बात नहीं कर रहे, मैं एक सादा सी बात कर रहा हूँ, मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुस्तकिल अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हों, ये मेरे लिए ज़्यादा मददगार होंगे या मेरे मोहताज रहें सारी ज़िंदगी, कौन मेरे ज़्यादा काम आएगा? ज़ाहिर है जो बच्चे मुस्तकिल होंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, उनकी अपनी पर्सनालिटीज़ होंगी, उनके अंदर फैसले करने की ताकतें होंगी, ये बच्चे मेरे ज़्यादा काम आएंगे मेरे बाप होने के नाते। सही है, ये निज़ाम है, इस निज़ाम को माजरत के साथ मोहताज लोगों की ज़रूरत नहीं है, इस निज़ाम को मुस्तकिल ताकतवर लोगों की ज़रूरत है। ये वो काम है जो हम पाकिस्तान में अभी भी नहीं कर पा रहे। हम अपनी बहुत सारी मुश्किलात को हल करने के लिए कहीं और देखने की कोशिश करते हैं, ये बात सही नहीं है। ये जज्बाती वाबस्तगी की बात नहीं कह रहा हूँ, कल्बी वाबस्तगी, रहनुमाई, नज़रियाती रहनुमाई, ये सब ज़रूरी है, लेकिन पाँव पे खड़े होने की बात है। अब आप कहेंगे भाई पाँव पे खड़े होने में मुश्किल क्या है? हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। क्या मिसाल के तौर पर हम तालीमी एतबार से उस जगह पे पहुँच गए कि जिसमें हम ये कह सकें कि हम मुस्तकिल पैमाने पर अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? ज़ाहिर है कि नहीं हुआ है। ये वो था जो हो जाना चाहिए था। हत्ता हम अभी तक बहुत सारे छोटे मसाइल में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर क्या हत्ता दीन की आला तालीम के मामले में हम अपने पाँव पे खड़े हो सके हैं? अभी तक नहीं हो पाए हम लोग। ये वो काम है जो 50 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। बस पहली चीज़ जिसको मैं कहूँगा वो पाकिस्तान में शिया का माशी, सकाफती और तालीमी इस्तकलाल है मुस्तकिल पैमाने पर, और इसके अंदर अगर डिपेंडेंसी हो अपने ऊपर हो, अपनी कौम के ऊपर हो, न किसी और के ऊपर। डिपेंडेंसी होती है इंसानों के अंदर, इदारों के अंदर, मसलन ये जो इदारा जिसके अंदर आप बैठे हैं, ज़ाहिर है ये इदारा पैसा जनरेट नहीं करेगा जिससे ये इदारा चलेगा, ये इदारा पैसा खर्च करवाएगा और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये खुद करे जो भी बंदोबस्त करना है, ये इस्तकलाल है। तो हमें ऐसा होना चाहिए अपने माश के अंदर, अपनी सकाफत के अंदर। एक बात, इस कमज़ोरी की वजह से एक और मुश्किल आ रही है, वो क्या? हमारा सियासी इस्तकलाल। चूँकि हम पाकिस्तान में उस इस्तकलाल पे नहीं आ सके, तो हम सियासी निज़ाम में मोहताजी के ऊपर शिकार हो गए, मोहताजी के शिकार हुए। तब मैंने कई साल पहले एक बात अर्ज़ की थी, बाद में बुराइयाँ सुनने की मुझे आदत हो गई है। अब कुछ वक्त गुजर रह गया होगा, जितना भी वो भी गुजर ही जाएगा, लेकिन ये कई साल पहले मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि आप सियासी पार्टियों से आज़ादारी की तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगना बंद कर दें, बंद करो। अगर आज़ादारी हमारी शहर रह गए और है, तो किसी बेवक

बेवकूफ को ये मत कहो कि हमारी रग की हिफाजत करे, ये हम खुद करें। ये सियासी मोहताजी और ये सियासी यतीमी ये तोड़ना बहुत जरूरी है। मोहताजी मत दिखाओ। आप जब किसी टेबल के ऊपर डायलॉग करने के लिए बैठते हैं, नेगोशिएशन करने के लिए बैठते हैं, और जिस टाइम बैठे हो उस वक्त आपकी कमजोरी आपके हाथ में हो जो आपने मुतालबे के तौर पर रखनी है, इसका मतलब आप शिकस्त खा गए। आपको कार्ड अपने हाथ में रखने हैं, ना कि मुतालबे। पहले आपने कार्ड शो करने हैं कि हम इस ताकत पर हैं। अब बताओ तुम हमारे मुतालबात कैसे पूरे करोगे, हमारी डिमांड्स कैसे पूरी करोगे। तो हम क्यों भीख मांगने की तरफ जा रहे हैं बार बार? इस वजह से कि हम अपने अंदर कमजोरी फील कर रहे हैं। क्यों कमजोरी फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर इस्तकलाल नहीं है। उस इस्तकलाल तक पहुंचो। आप कहेंगे उसके लिए हमें मिसाल के तौर पर हुकूमत से टकराना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुकूमत से टकराए बगैर हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें खुद हुकूमतों की अपनी ज़रूरतें हैं। एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल, और उसके ऊपर बहुत बड़े नतायज शायद कहें कि आप नहीं ले सकते, लेकिन मैं इसी में कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर कराची में स्काउट्स ने बहुत सारी चीज़ों को संभाला और उसके अंदर अज़ादारी की बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ थीं जो हम पहले हुकूमतों से तवक्को कर रहे थे कि वो संभालें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बच्चे बड़े हुए, उन्होंने इन कामों को अपने हाथ में लिया और उससे बहुत बेहतर कर लिया जो हम हुकूमती अहदेदारों और जिम्मेदारों से तवक्को कर रहे थे। ये इस्तकलाल है, ये इस्तकलाल है जो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारी ताकत होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी से बगावत भी नहीं है। हर कौम का हक है कि वो अपने पाँव पे खड़ा होना सीखे। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। एक आखिरी बात थी और वो शायद इन तमाम बातों के पीछे बुनियादी तरीन सबब है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप किसी बच्चे से बात करें कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, चूंकि मुझे बोलते हुए 45 मिनट से ज़्यादा हो गए तो शायद आप थक गए होंगे। तो मैं एक बच्चे से पूछा, भाई तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा टीचर बनना चाहता है। तो मैंने पूछा क्यों बनना चाहते हो? कहने लगा ताकि जिसको चाहूँ थप्पड़ मार सकूँ। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इस बच्चे के जहन में ताकत का इजहार कोई बड़ी बात है। सही है। और हमारी जो मुल्क की करप्ट ऊपर की क्लास है वो क्या करती है? वो भी यही करती है, ताकत का इजहार करती है ना। सही है। ये उतनी अहमक है जितना वो बच्चा अहमक है। सही। कौम को आला अहदाफ कौन देगा? कौम को आला किरदार कौन देगा? ये हमारी कमी है। हम अभी तक ये सेट नहीं कर पाए कि इस कौम को आला अहदाफ देने किसने हैं, आला किरदार देना किसने है। हमारा माजरत के साथ, आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, हमारा आलम यह हो गया है कि तमाम वो जगह हैं जिनका काम ये होना चाहिए था कि वो अगर आवाम में कोई पस्ती देखें तो उस पस्ती का मुकाबला करके उसको राह रास्त पे लाएं, वो उसी पस्ती से फायदा उठाकर अपने मकाम को सही करने की कोशिश करते हैं। तो कौन चैलेंज करे आवाम की पस्ती को? और आवाम का पस्ती पे होना उनकी बुराई नहीं है, बुराई उसकी है जिसको चैलेंज कर लेना चाहिए था। क्यों नहीं चैलेंज किया? क्यों इनको अपलिफ्ट नहीं किया? ये मुश्किल आ गई हमारे साथ। अगर कौम में मादा परस्ती थी तो हर वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी थी कि मादा परस्ती से लड़ता और उनको मादा परस्ती से बाहर निकालता, वो उसी मादा परस्ती का शिकार होकर और कमाने के लिए बैठ गया। कौन सही करेगा? इसमें सब शामिल हो रहे हैं सिवाय माशज़ा व नदर, जो अरबी में कहते हैं, गिने गिनती के चंद लोगों के सिवा। अगर कौम में मादा परस्ती फैल रही है, सब मादा परस्ती के हमाम में बैठे। अगर कौम में शोहरत परस्ती फैल रही है, सब शोहरत परस्ती के हमाम में चले गए। जो गंद आ रहा है, और जाहिर है गंद तो आएगा, ये पूरी दुनिया क्या है इस वक्त, ये गंद का ढेर बनी हुई है।
ہم میرے خیال میں, اور میں تنہا نہیں ہوں, ظاہر ہے بڑے بڑے اسکالرز نے بات کہی,

ये 60s में हत्ता कुछ स्कॉलर्स ने इस बात को समझ लिया था कि हम लोग फंस गए, तो 60s में हत्ता उन्होंने कह दिया था कि हम जिस अखलाकी पस्ती में अब फंस गए हैं, ये हम तारीख बशरियत में कभी नहीं फंसे थे 60s में, जो हमें लगता है कि अच्छा दौर था, लेकिन देखने वाले देख गए थे कि नहीं अब मुसीबत आ गई है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमें सब हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी इस वक्त है वो ये कि कौम के अंदर अगर कोई चीज़ करेक्शन होनी है उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा, ना दानिश्वर, ना दीनी रहनुमा, ना इल्मी क़यादतें। असल यतीमी ये है, असल यतीमी ये है। अच्छा, अब पब्लिक किस यतीमी को देखती है? पब्लिक एक ऐसे नक्स को उठाती है जिसको शायद नक्स भी नहीं कह पाऊंगा। वो क्या है? मैं जहां जाऊंगा, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर किसी से बातचीत होगी, तो सबसे पहले जो एतराज़ात करेंगे या अपनी इल्मी काबिलियत को साबित करने के लिए जो पॉइंट उठाएंगे वो ये, या खुलूस को साबित करने के लिए, ये कौम एक प्लेटफॉर्म पे जमा क्यों नहीं होती? असल क्या ये पॉसिबल भी है? आप कौम का मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर? पाकिस्तान की आबादी का अगर मैं 15% ले लूँ अहले बैत के चाहने वाले, और हमारी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम कसरत से हैं वो आबादी है, कोई बुरी नहीं है, 25 करोड़ के लगभग शायद होगी मेरे ख्याल में, सही? तो हम अगर इसमें अहले बैत के चाहने वाले को काउंट करें तो हम कितनी आबादी की बात कर रहे होंगे? तकरीबन लगभग 4.25 करोड़ की, और वो एक जगह होंगे या बिखरे हुए होंगे? बिखरे हुए होंगे। एक कौम, एक कबीला, एक जबान, एक सकाफत, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एक तालीमी सतह, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इनसे मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे? ये नहीं होने वाला है। अगर मैं ये समझ रहा हूँ ये वो काम है जो मुझे करना है, ये नहीं होने वाला है, तो आप कहेंगे फिर क्या होगा, कैसे? हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं जमा होंगे, एक सिर्फ आप करने, सबको एक दूसरे का हमदर्द बना लें, ये पॉसिबल है, हमदर्द बना लें। यानी मैं उसी पार्टी में बैठूं जिसमें बाकी सारे बैठे हैं, ये मुश्किल है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी में बैठूं, मैं दूसरे से ला ताल्लुक रहूं, ये नहीं होना चाहिए। हमदर्दी का जज्बा अपने अंदर रखो, ये हमें चाहिए, सही? बस मेरे ख्याल में ये होना चाहिए जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वक्त को देखते हुए, थोड़ा अपनी एनर्जी को देखते हुए, मैं इस मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ कि अगर हमें कभी किसी ज़माने में कोई बुनियादी हिकमत अमली बनानी है तो करना क्या है, मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे इतनी जल्दी क्यों आ रहा हूँ? अभी मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, पॉइंट्स हैं अभी, लेकिन मैं इस पे क्यों आ रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में चंद मिनट्स में। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं पता दसियों मरतबा, और मुमकिन है दसियों से कम, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जहाँ कहीं पहुँचा उन्होंने कहा कि मौलाना शिया के पास पाकिस्तान में कोई बुनियादी हिकमत अमली नहीं है। तो मैंने कहा बेज़ाहिर ऐसा ही है, हमारे पास कोई बुनियादी हिकमत अमली नहीं है। उनमें से कुछ ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई बुनियादी स्ट्रेटजी हो? तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है। उनमें से कुछ को मैंने इस काबिल नहीं समझा कि अपना दर्द दिल उनके साथ शेयर करूँ, जाने दो, ये ऐसी बोल रहे हैं बोलने दो। उनमें से कुछ ने ये हौसला दिलाया कि मौलाना ये बताएं ये कैसे हो सकता है, तो फिर हम इसके ऊपर कुछ करें काम। तो उनमें से कुछ के ऊपर मैंने टाइम लगाया और उनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट में ब्रीफ किया कि ये हो सकता है। जितने भी लोगों को मैंने ये प्रोग्राम उतनी डिटेल से बताया 20 से 25 मिनट, आज तक किसी ने ये नहीं कहा

कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसी वक्त ऑन स्पॉट जितनों को भी मैंने 20-25 मिनट में बताया, सब ने विदाउट एक्सेप्शन ये कहा कि ये प्रैक्टिकल है, ये डूएबल है। उनमें से एक ने कहा कि मैं एक पार्टी का नाम लिया, शिया दीनी पार्टी, मैं इससे ये काम करवाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि आप करवा लो। उन्होंने कहा कि आप खुद कर लें ये। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने कर भी लिया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी से करवाना पड़ेगा। सुपरवाइज असिस्टेंस वो करने को तैयार, सुपरवाइज नहीं असिस्टेंस के लिए तैयार। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक पार्टी का नाम दिया कि मैं उससे काम करवाऊंगा। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो ये काम करेंगे। उस बंदे खुदा ने कहा कि मेरे पास असर और रसूख उस पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं वो करवा सकता हूँ। मैंने कहा कि वैसा यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा आप कोई टाइम लिमिट दोगे कि कितने अरसे के बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि होगा या नहीं होगा? तो उसने कहा 6 महीने लगाते। मैंने कहा बिल्कुल सही। ये आदमी बहुत उसूली आदमी था। इसने 6 महीने बाद मुझे फ़ोन किया, पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान में था, पाकिस्तान फ़ोन किया और कहा मौलाना मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप सही कह रहे थे ये नहीं करेंगे। ये भी एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ है, ये भी एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ है। कोई मसला है यहाँ पर कि जो हमारे अहले हल व अक़्द हैं वो कोई मरकजी हिकमत अमली का प्रोग्राम नहीं बनाना चाह रहे, या तो कोई उनके पीछे बैठा है जो बनाने नहीं दे रहा है, या वो खुद ये इरादा नहीं कर रहे। और मुझे इसकी एक वजह समझ में आती है, एक वजह, वो क्या है? मैंने यहाँ तक कहा है कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ताकतवर हलके हैं शिया के अंदर, उनसे मैंने अर्ज़ किया कि आप जो भी प्लान बनाओ खुद बनाओ, सिर्फ एक काम कर लो, कौम को जितना हिस्सा बताना है उसके बताने के 10-15 सफ़े हमें भी दे दो, जो बनाते हो बनाओ, आपको हमारा सीक्रेट है, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका सीक्रेट होगा। इसमें 10-15 सफ़े ऐसे होंगे जो हम जैसों के लिए भी चलेगा, वो हमें दे दो। आज तक मुझे कभी वो 10-15 सफ़े नहीं मिले। शायद मैं इतना छोटा आदमी हूँ कि किसी को उसको देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल किसी और ने भी रिपोर्ट करके मुझे नहीं बताया कि उसको मिले हों। सही है, ये हमारी सबसे बुनियादी कमज़ोरी बन गई है, सबसे बुनियादी कमज़ोरी बन गई है। हम मुश्किल को लंबी मुद्दत के लिए एड्रेस नहीं करना चाह रहे, मुश्किल को लंबी मुद्दत के लिए एड्रेस नहीं करना चाह रहे। हमारे साथ क्या डायलेमा है? बहुत माजरत के साथ मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, अब मैं अंदर से डर रहा हूँ, यकीन मानिए मैं अंदर से डर रहा हूँ कि मैं होगा क्या फिर। किसी भी वजह से हमारा जो रिसोर्सेज को एलोकेट करने का रूल है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने का रूल है, वो इतना पास्ट है कि जहाँ पर कम वक्त में फौरी तौर पर पब्लिकली शोन रिजल्ट हो, हम वहाँ पैसा लगाने को तैयार हैं, रिसोर्सेज लगाने को तैयार हैं। और जहाँ हमें पता चले कि रिजल्ट लॉन्ग टर्म में निकलेगा और पब्लिक में नहीं आएगा, वहाँ हम नहीं लगाना चाहते। ये हमारा क्राइसिस है, ये हमारा डायलेमा है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक मस्जिद बनाऊँगा, उस पर 10 करोड़ रुपये लगाऊँगा, वेल डेकोरेटेड, शायद मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक तहकीकाती इदारा बनाऊँगा, उस पर 5 करोड़ रुपए लगाऊँगा, 3 साल के अंदर उससे 5 मुहक्कक निकालूँगा, ये 5 करोड़ नहीं मिलने मुझे। हमारी असल मुश्किल यहाँ फंस रही है कि हमारे दिमाग इतने ताकतवर नहीं बने हुए कि अपनी रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म में प्लानिंग के स्टेज में अचीवमेंट के ऊपर लगा सकें। हम अपने रिसोर्सेज को फौरी रिटर्न पब्लिकली शोन उसमें लगाना चाहते हैं। ये रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करने का इंतहाई इनएफिशिएंट उसूल है जो हमने अपनाया हुआ है इस वक्त।
इस वजह से हमारी मुसीबत बनती जा रही है।

हम इसको नहीं डील कर पा रहे, और ये कब हम डील कर पाएंगे, जब हमारे दिमाग लंबी मुद्दत सोचने के काबिल बनेंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये जो इस टाइप के प्रोग्राम्स हैं, ये शायद ऐसे लोगों को तैयार करेंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, जो अपनी लंबी मुद्दत की हिकमत अमलियों को इतनी अहमियत देंगे कि जिसके ऊपर वो अपनी रिसोर्सेज लगा के खामोश खोश बैठे रहेंगे। वरना हमें क्या चाहिए होता है, फौरी नजर आए और पब्लिक के सामने आए। ये अच्छा उसूल नहीं है, ये बहुत पस्त है, इसमें रियाकारी भी बहुत ज्यादा है। बाहर क्या हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे तवज्जो देना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कहां से काटूं के फायदेमंद जगह पे खत्म कर सकूं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं। अच्छा फर्ज कीजिए, बहुत शुक्रिया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा सा एक प्लान सोचते हैं, थोड़ा सा एक प्लान। ये वो नहीं है 20-25 मिनट वाला, आप कहेंगे अभी शुरू करेगा 25 मिनट ले लेगा, नहीं नहीं 5 मिनट के अंदर अंदर। वो क्या है, फर्ज कर लेते हैं हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें इस पाकिस्तान में शिया के लिए कोई मंसूबा बनाना है, तो उस मंसूबे के कितने सब डिविजन्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सब डिवीज़न पाकिस्तान में शिया की सकाफती तरबियत, सकाफती दीनी तरबियत, एक सब डिवीज़न पाकिस्तान में शिया की तालीमी तरबियत, तालीमी मुस्तकबिल, एक डिवीज़न पाकिस्तान में शिया की माशी सूरत हाल, उसकी तरक्की, एक और डिवीज़न, सही है, पाकिस्तान में शिया की सियासी सूरत हाल, उसकी तरक्की, सही है। ये हमने चार सब डिविजन्स बना दिए, चार डिविजन्स बना दिए, सही है। अच्छा अब एक सादा सा काम कर सकते हैं, बस फर्ज करने कोई एक इदारा है, वो ये करे इन चारों मौजूदात पर इनसे रेलिवेंट ऐसे स्कॉलर्स, शिया स्कॉलर्स जो इन फील्ड्स के माहरीन समझे जाते हैं, उनको एक असाइनमेंट दे दें, ठीक है। तो हम मिसाल के तौर पर एक शिया इकोनॉमिस्ट को पकड़ें जिनका पब्लिक से भी ताल्लुक हो, उनसे ये कहें कि पाकिस्तान में शिया की इकॉनमी के हवाले से आप एक सर्वे कंडक्ट करें, जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमें ब्रीफ कर दें, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है, तालीम मौजूदा सूरत हाल क्या है, सियासत मौजूदा सूरत हाल क्या है आपके पास, और हर फील्ड पर दो दो स्कॉलर ले लें आप, तो आपके पास 8 रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे जिनमें मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर, 8 नहीं 10 ले लें अगर आपने 5 डिवीजन बनाई है, 10 रिसर्च पेपर आ जाएंगे जिसमें आपको इस वक्त तशय्यो की मौजूदा सूरत हाल एक मुहक्किक और एक माहिर फन के अंदाज में पता चल जाएगी, सही है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बल्कि थोड़ा सा उससे पहले आपने कमेटी बनानी है 2 या 3 अफराद की, जो कौम के ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इल्म को समझने की ताकत है, पेपर को पढ़ने की ताकत है, कोऑर्डिनेट करने की ताकत है, उनसे आपने ये कहना है कि भाई ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी नोक पलक को आप सही करें, इस पर क्या कमी है, क्या डलना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, वो आप सही करें। सही कर लिया, उसके बाद उन्हीं स्कॉलर्स को या और दूसरे स्कॉलर्स को आप हायर करें उन्हीं सब डिविजन्स के अंदर रहते हुए, या कोई और ज़रूरत है तो एक और सब डिवीज़न क्रिएट करें, और उनसे कहें कि अब हमें ये चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल तो ये है, जो होना चाहिए 25 साल के बाद वो क्या है, अब हमें 10 पेपर इस पे चाहिए कि जो अगले 25 साल में होना चाहिए था वो क्या है। तो 10 पेपर आपके पास आए थे इस पर कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब 10 पेपर आपके पास आएंगे कि 25 साल के बाद क्या होना चाहिए था। फिर दोबारा वो टीम बैठे, दोनों को नज़दीक लेकर आए और एक दफ़ा फिर

10 पेपर्स लिखवाए कि इनको ब्रिज कैसे होना है, इसको वहां तक कैसे जाना है। सही है। अब आपके पास 30 पेपर्स हैं, आपके पास एक कमेटी हो जो इसको तय करेगी कि किस फील्ड को किस से कनेक्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है, किस फील्ड को किस से कनेक्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपकी खिदमत में कनेक्ट करने वाला अर्ज कर देता हूं और आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। फर्ज कर लीजिए कि मैं 1,00,000 बच्चों की स्कूलिंग की बात कर रहा हूं, 1,00,000 बच्चों की स्कूलिंग की बात, ठीक है, और मुझे 1,00,000 बच्चों की मेंटालिटी के ऊपर काम करना है, उनकी ज़हनियत के ऊपर काम करना है स्कूल्स के अंदर, तो मुझे स्कूल्स का कोई सिस्टम चाहिए जिसमें 1,00,000 बच्चे तरबियत पा सकें, ठीक है। अगर मैं 1,00,000 बच्चों की तरबियत के लिए सोच रहा हूँ तो ये सकाफती और तालीमी हिस्सा आ गया, सही है। लेकिन अगर मुझे स्कूल बनाना है तो मुझे हर बच्चे के लिए स्कूल की बिल्डिंग में 50 square feet पर स्टूडेंट कैपेसिटी क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 50,00,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया बनाना है। आजकल की टर्म्स में मरे से मरा कॉन्ट्रैक्टर भी 4,000-4,500 से कम पे नहीं बना पाएगा, ये अमाउंट 10 crore में पहुंच जाएगी। सही है। तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ से लाएंगे आप? आप अपने इक्तसादी डिवीजन से लाएंगे, सही है। लेकिन अभी रुक जाइए, इसमें एक शॉर्टकट भी है। क्या ये ज़रूरी है कि मैं काम 1,00,000 स्कूलों से शुरू करूं, 1,00,000 स्टूडेंट के स्कूलों से शुरू करूं? नहीं, एक और जगह शुरू कर सकता हूं। वो क्या? 1,00,000 स्टूडेंट्स के टीचर्स को ट्रेन करने से शुरू कर सकता हूं। एक टीचर तकरीबन 250 से 300 बच्चों को हर साल डील कर रहा होता है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत आसानी से इस 1,00,000 को 300 से तकसीम कर सकता हूँ। अब मुझे जो स्पेस चाहिए है वो 100,000 divided by 300 into 50 square feet चाहिए, सही है। तो मेरी जो कॉस्ट होगी वो सब्सटेंशली कम होती चली जाएगी। अब मुझे इकोनॉमी के डिवीजन में जाके देखना है कि ये अमाउंट कहाँ से जनरेट होगी, सही है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मसलन अब इकोनॉमी का डिवीजन मुझसे कहता है कि मुझे इस अमाउंट को लाने के लिए कहीं ना कहीं खुम्स का सहारा लेना पड़ेगा, और मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी में खुम्स पे करने वाले मुश्किल से 5 से 10% हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 80% से 90% लोग ऐसे होंगे जिनसे खुम्स लिया जा सकता है। ये किस डिवीजन में जाएगा? ये सकाफती और तालीमी में जाएगा। ये कहाँ से शुरू करेगा? ये शुरू करेगा किसी खतीब से, जाकिर से, आलिम से, और उसकी तरबियत कहाँ पे होगी? ये प्लान ऐसे बनते हैं, ये प्लान ऐसे बनते हैं, सही। आपको इस पर टाइम लगाना होता है, दिमाग लड़ाना होता है, सही। बदकिस्मती से हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया। मुझे 30 साल में बहुत दफ़ा ये तजर्बा हुआ कि मैंने किसी सिटिंग में बैठकर एक बात कही कि अभी ये मत करो, ये कर लो, और उसके बाद मैंने जो धमकियां सुनी वो अल्लाह जानता है, और 10 साल बाद जिन्होंने धमकियां दी थी उन्होंने बुलाकर एक्सेप्ट किया कि आप सही कह रहे थे, हमें उस वक्त यही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब हम चक्की के ऊपर सवार हो चुके हैं, अब हम पीछे नहीं जा सकते। मैंने 30 साल में ये बहुत दफ़ा देखा है, सही। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ जो कर रहा हूँ वो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको जो पहला काम करना होगा मुझे और आपको, वो ये कि अपने दिमागों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अपनी रिसोर्सेज लगाने के ऊपर तैयार करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सा इस पे आइए कि हमें लॉन्ग टर्म कैसे लगाना है। आखिरी बात अर्ज करता चलूँ, आपकी ज़हमत तमाम करूँ, जब तक हम अपनी कौम के अंदर आला इंसानी किरदार और आला माशरा